Mirchi. It's hot.

अगर आप डेटिंग ऐप पर किसी को मिले हो, देन देयर इज दिस वन सिंगल रूल, अगर आप दोनों की बीच की केमिस्ट्री इज नॉट ऑन पॉइंट, आप उस बहुत ही अडोर्ड बंदे को अपनी किसी दूसरी फ्रेंड के लिए साइफन ऑफ स्लैश मार्केट नहीं कर सकते हो. नाउ मेरा इंटेंशन तो ये था व्हेन आई मेट दिस गाय ऑन अ डेटिंग ऐप कि यार तेरी मेरी दोस्ती अच्छी हो गई है, बट हमारे बीच में ऐसे वो क्रंची केमिस्ट्री नहीं है, तो व्हाई डोंट आई इंट्रोड्यूस यू टू माय अदर बेस्ट फ्रेंड, वो भी सिंगल है, और हो सकता है तुम दोनों के बीच की शिपिंग सही बैठ जाए. लेकिन इस बंदे को अपेरेंटली बहुत राइटली सो बुरा लगा दैट मैं अपने गुड्स फ्रॉम अ डेटिंग ऐप किसी और इंसान को पास ऑफ कर रही थी. एंड आई सेड यार मैं पास ऑफ नहीं कर रही थी, तू बढ़िया बंदा है, मेरी बेस्टी बढ़िया बंदी है, शी इज ऑल्सो सिंगल, यू आर ऑल्सो सिंगल. ही वॉज लाइक दैट डज नॉट मीन जस्ट बिकॉज हम दोनों की केमिस्ट्री नहीं है तो मुझे किसी और को हैंड ओवर कर देगी भाई. बट मेरा इंटेंशन तो यही था कि दोनों खुश हो जाएंगे, जब भी मुझे अपनी बेस्टी से बात करनी होगी दोनों एक ही घर में होंगे. बट अपेरेंटली इट इज़ ट्रू दैट द रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस. अगर मेरी तरह आपने भी अपनी जिंदगी की दोस्तियों के कबाड़े अनविटिंगली किए हैं, आई डोंट वी कंपेयर नोट्स, क्योंकि ले दे कि शायद आप ही मेरे दोस्त बचोगे जिंदगी में. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाट यू नीड टू डू डार्लिंग, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
1: शशि वो मैनहट्टन है।
0: मैनहट्टन
2: मैन आजमी हैट टोपी और मम व्हाट्स टैन इन हिंदी
1: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Mirchi, it's hot.
1: Oh God, one more.

0: The reason you're sticking on with your girlfriend is because आपको उसकी मम्मी secretly hot लगती है, but मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, promise.
1: The secret box.
0: Also because of secret box है, अगर आपके पास एक ऐसी confession है, feel free to hit me up on Insta या FB. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना, नाम के spelling है R-O-C-H-I-E. Send me your confession with your number all in one message and I'll call you like I call my mystery caller. Hello mystery caller.
2: हाय रोशी,
0: गेम शो
2: ठीक हो? ठीक हूँ.
0: अच्छे,
2: मुझे आपसे कुछ शेयर करना है.
0: करो ना.
2: तो मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा, काफी अशेम्ड भी हूँ मैं ये बोलते हुए, पर आई डोंट नो हाउ टू से. सो मेरा बॉयफ्रेंड एंड आई वर टॉकिंग एंड आई वाज ड्रंक ऑन दैट कॉल एंड काफी ड्रंक, मतलब आप समझ लो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ. एंड देन वी केप्ट टॉकिंग, इट एंडेड अप इन अ फाइट और काफी आर्ग्यूमेंट हो गई. बहुत बुरा भला बोल दिया यार, तब भी मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या बोल दिया. एंड देन मैंने उसे ब्लॉक कर दिया.
0: ओके, व्हिच इज फेयर.
2: एंड या आई जस्ट ब्लॉक्ड हिम बिकॉज आई डिडंट वांट टू हैव एनी फर्दर कॉन्वर्सेशन. बट नेक्स्ट डे the whole day I kept waiting for his call without realizing ki maine usse block kar diya.
0: Oh babe, that's so dumb. Sorry.
2: I know, I told you, maine pehle bola tha, I felt ashamed while ashamed and weird that how can you, I be so stupid.
0: तो आपको पता कैसे चला कि लाइक व्हेन डिड यू रियलाइज दैट एक सेकंड ही कांट कॉल मी क्योंकि मैंने ही उसे ब्लॉक किया है.
2: या मतलब ये सब हुआ जब आई स्टार्टेड टेक्स्टिंग हिम, ओके, बिकॉज़ टेक्स्ट सो यू कैन स्टिल डू. सो मैंने टेक्स्ट किया उसे कि तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है, हमारी इतनी लड़ाई हुई है एंड यू डिडंट इवन केयर टू कॉल मी. एक बार तो दिन में फोन कर सकता था तू, व्हाई व्हाई वुड यू नॉट.
0: मैं मर जाना चाहती हूँ हंसते हंसते. There could not have been a better confession than this. You poor thing, यार, I'm feeling so bad.
2: रोशी, I would suggest आप माइक ड्रॉप कर दो क्योंकि I'm sure के बाद कुछ बोलने को है नहीं.
0: ऐसे कैसे बेबी डॉल माइक ड्रॉप है ना कुछ करने के लिए. ये रहा.
3: You've been roshified.
0: You should feel a little bit better, nahin, don't you think?
2: Yeah, yeah.
0: Agli baar na, when you're getting drunk, just make sure that if you're blocking someone, you should write it down somewhere. Post it par, aur usse chipka dena apne bathroom ke mirror pe, taki agle din when you recover your senses, you will know what you've done. It was amazing talking to you, mystery caller. You're the best. Seriously.
2: Thank you.
0: Oh God, thank you. और अगर आप भी ऐसे ही मेरी mystery caller की तरह absolutely crazy AF हैं, you're totally a part of the tribe, man. So hit me up on Insta या FB and we will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, मैं हूँ आपकी ब्रोशी, नाम की spelling R-O-C-H-I-E. So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

अब ये पीयूष मिश्रा भी मेरा दिल लेकर ही मानेंगे, उन्होंने ये लाइंस लिखी हैं, जरा गौर फरमाइएगा। औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके, ध्यान से सुनना हाँ, औकात नहीं थी जमाने में जो मेरी कीमत लगा सके, कमबख्त इश्क में क्या गिरे, मुफ्त में नीलाम हो गए। अगर आपको भी जिंदगी में ऐसा ही लगता है ना, तो सही जगह पहुंचे हो आप, क्योंकि आप और मैं हम दोनों बैठकर पूरी रात इस पॉइंट से कल सुबह तक प्यार के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है दैट्स ट्रू फॉर यू, देन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक। एंड व्हाइल यू डू दैट, दो चीजें जरूर याद रखना, पहली ये कि प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और दूसरी ये कि जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोड। रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची, मिर्ची।

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम फॉर द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaane, usme ek nayi entry hai, hamara 90s 2000s ka indie pop classic, all this and more. To seedha shuruaat karte hain is hafte ki with Gaana number 10, Mika Singh the other rapper ka gaana, gaane ka naam hai Chori. Pichle hafte se apni position par barkarar, Chori is this week on Gaana number 10. Uske baad Mitta Roar ka Shisha, Mitta Roar ki composition, unhi ke lyrics, pichle हफ्ते से तीन पोजीशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका, वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। Lots of right answers. It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है। Before we move on and we play the song, Himesh Reshammiya is also exactly that artist जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए। इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग, मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ, आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है।

0: आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ @RJKareka पर, जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: Number 8.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए, मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4।

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna ni begane baro Krishna ni begane.
0: गाने का नाम है कृष्णा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स. दिस सॉन्ग इज ट्रूली रेवोल्यूशनरी. आई डोंट थिंक इस गाने को हम किसी भी एक बॉक्स या एरा में फिट कर सकते हैं. ये गाना 1996 में रिलीज हुआ था, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इट लुक्स लाइक आज किसी स्टूडियो से फ्रेश प्रोड्यूस होके आया है. कलोनियल कजिन्स वर डेफिनेशन ऑफ फ्यूजन. एक तरफ हरिहरन जी हु इज क्लासिकली ट्रेन गजल सिंगर, एंड दूसरी तरफ लेस्ली लुईस हु इज ऑल अबाउट इंग्लिश रॉक एंड रोल एंड पॉप. दोनों ने साथ में मिलकर बनाया कलोनियल कजिन्स, जिनकी साउंड आज भी रेवोल्यूशनरी है. 1996 में उनका डेब्यू एल्बम आया, जिसका पार्ट है ये गाना कृष्णा. इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट. बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है. मैं तब छोटी थी. गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स, एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस. और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक Krishna, as Jesus, as Allah, as anyone. And this is where this song becomes extra special. What I absolutely love about Kolonial Kozins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Unhone radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi jawab dhoond rahi thi, aaj bhi jawab dhoond rahi hu. Kolonial Kozins ka 1996 ka track. This is Krishna playing right next for you on our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वुड फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्का है माई साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी है. It's an Anoop Jain song, उन्हीं की composition, a Coke Studio Bharat song. 18 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से, एक position नीचे drop होके this week on गाना number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. बद्दी का नाम है कनिका. Enjoy.
1: Number 3.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बधिया नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो वे वी ब्रिंग टू यू द हॉटेस्ट पॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री हो चुकी है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ए क्विक रीकैप राइट फ्रॉम द टॉप। गाना नंबर 10 पर था मीका सिंह दैया द रैपर का छोरी। फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9।

0: गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने। अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7। दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6। जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डाब दबीना। उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5। दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4। अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3।
1: कायर जो थे वो शायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में।
0: गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन 3 पोजीशंस ऊपर जंप करके करण औजला 21 और बॉयफ्रेंड 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1। ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

Mirchi. It's hot. Mirchi. It's hot.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कंटेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम। लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉक 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम्स में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना। नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, 4 स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये। जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप्स, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। No loud payoff, no screaming hook, बस माहौल, the atmosphere, वो late night loneliness, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। The writing itself feels tired, in a good way, it's exhausted, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल percussion, ambient synths, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड बट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटिफुल रिस्ट्रेंट एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस पिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. गाना नंबर 18 इस हफ्ते क्यों मजा आ रहा है, From Bandar.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 10.

मामा शुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहां प्रीतम दा की साइड पर हूं, हाँ उनका पास थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे, एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike Mashuka, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is hafte. Main aur tu by Jasmine Sandlars from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number 8.

0: नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाए, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क।
1: पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर थ्री।

0: दी वाओ।
1: नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है, एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है। क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
2: See, पापा, what we want as children, if I can tell you, near people, or any child wants is that if you have, आपने पैसा कमाया है, नाम कमाया, शोहरत कमाया है, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
3: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
2: इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही चाहिए।
3: मैं बड़ा ही वही हुआ, मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे, ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। एंड अ स्ट्रगल, एवरी वन हैज टू डू स्ट्रगल। ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
1: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है, डूड व्हाट अ लाइन। डेविड सर हैप्पी रिटायरमेंट। लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य धर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20, जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत, नंबर वन।

0: बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot.

पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तू तो जा तू है गौर, ये तो बता तू है कौन, कहां से है ये, कहां तू जाएगी, पागल करके मुझे मरवाएगी।

Mirchi. It's hot.

हेलो हेलो माय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, जहाँ पर चाय गरम, कॉफी ओवर कॉन्फिडेंट और ट्रैफिक जो है काफी प्रेडिक्टेबल हो चुका है. लेकिन यू मेड द राइट चॉइस. वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त. बातें करने वाले हैं हम म्यूजिक, मिर्ची एंड मस्ती के बारे में. ढेर सारी गॉसिप, गपशप और अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है अगले कुछ घंटों में. और तुम्हारी लाइफ होने वाली है सुपर मिर्चीदार, सुपर ऑसम. और आज का लाइफ का मात्रा है नेटफ्लिक्स की तरह, लोगों से पूछो मत आर यू स्टिल वॉचिंग. बस अपने आप को अपग्रेड करते रहो, क्योंकि हम देसीज जो है ना, उनकी लाइफ का अनऑफिशियल चैलेंज ही होता है इमोशनल बैगेज को कैरी करना. और इसी बात पर फटाफट से मुझे फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. अभी फिलहाल कहीं जाने का नहीं, चिपक के बैठने का यहीं पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

गुड मॉर्निंग गाइस, मिर्ची मॉर्निंग्स पर दिस इज प्रिसिला विद यू। आज है 3rd of June और हिस्ट्री में आज के दिन क्या हुआ, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले 1915 में रविंद्रनाथ ठाकुर गॉट अ नाइटहुड फ्रॉम द ब्रिटिश एंड प्लॉट ट्विस्ट ये था कि अ फ्यू इयर्स लेटर ही गेव इट बैक आफ्टर द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। 1947 में अ ह्यूज डे फॉर द सबकॉन्टिनेंट, द माउंट बैटन प्लान वॉज अनाउंस्ड, द रोड मैप दैट लेड टू द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। कट टू 1965, अमेरिका लुक्ड अप and said, what if, but outside. Astronaut Ed White became the first American to walk in space. And 1972 mein India commissioned INS Nilgiri, a proud moment for Indian naval history. And then history got heavier. 1989 mein protests in Beijing, Tiananmen Square ended in a military crackdown. 1998 mein Germany saw one of the deadliest high-speed rail disasters in history. Agar tumhare paas kuch aise history ke nuggets hai, toh fatafat se share karo mujhse. Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp kar sakte ho 9033 Mirchi par. That's 9033647244. Right now, stay tuned and stay hot.

अच्छा क्विक क्वेश्चन, व्हेन यू वर 15 व्हाट वर यू अर्निंग? पॉकेट मनी, एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम, बिकॉज़ समबडी आउट देयर कलेक्टेड क्रोर्स एंड एन ऑरेंज कैप एंड राइटफुली सो. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट्स टीनेज टोर्नेडो वेब ऑफ सूर्यवंशी हू जस्ट रैप्ड अप एन आईपीएल सीजन दैट लुक लाइक समबडी एक्सीडेंटली स्विच्ड करियर मोड ऑन. उनकी टोटल अर्निंग रही है इस सीजन में 2.5 करोड़ रुपीज, विच इज रफली अराउंड 290,000 से 300,000 डॉलर्स. और उनका ब्रेकअप भी सुन लो, सीजन रिटेनर, मैच फीस, बोनस अवार्ड्स, बेसिकली every time this guy walked into the field, excel sheet somewhere started smiling. And not normal trophies, mvp, orange cap, super striker, super sixes and emerging player. Matlab awards ke liye shelf nahi, ek separate flat lena padega. And imagine explaining this to desi parents. Beta sharma ji ka beta residency kar raha hai. Aunty, vaibhav ne ipl mein roughly $300,000 kama liye hain. Meanwhile, हम यहाँ पर बैठकर कूपन कोड्स प्लस लॉयल्टी पॉइंट्स प्लस फ्री शिपिंग मिलेगा क्या, ये सब पूछते रहते हैं. लेकिन ऑनेस्टली इट्स अ फन रिमाइंडर कि टैलेंट चाहे कहीं पर भी हो, उसकी टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तभी सक्सेस मिलता है. और इसीलिए मैं तुम्हें याद दिला दूं, इफ यू आर न्यू टू दिस कंट्री एंड यू आर वरिंग अबाउट गेटिंग अ जॉब, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी विजिट एम्स एडुकेशन, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज. मोस्ट ऑफ देयर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स प्रोवाइड यू रियल टाइम clinical experiences in hospitals and medical centers. तो तुम काम करते करते real time experience gain कर सकते हो. और तुम्हें चाहिए सिर्फ US equivalent high school graduation to apply. Call करो अभी के अभी AIIMS पर, उनका number है 908-222-0002. I'll repeat 908-222-0002. और इसके अलावा और गाइडेंस चाहिए तो aimseducation.edu पर विजिट करो, या फिर तुम मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप कर सकते हो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

sitting at 58 degrees Fahrenheit, but because of the wind, it's feeling closer to 55 degrees Fahrenheit. यानी कि वेदर के कवि कहना चाहते हैं हुडी वेदर तो चल रहा है लेकिन इतना ड्रामेटिक नहीं कि तुम विंटर हुडी निकाल लो. गुड न्यूज ये है कि जीरो रेन इज एक्सपेक्टेड इन नेक्स्ट 24 आवर्स एग्जैक्टली एज इट वॉज एक्सपेक्टेड इन द लास्ट 24 आवर्स और बारिश हुई नहीं. मॉर्निंग स्टे क्लियर एंड टुनाइट ऑल्सो स्टेज क्लियर, यानी कि अम्ब्रेला को आज घर पर छुट्टी मनाने के लिए छोड़ा जा सकता है. आज का रेंज लेते हैं फ्रॉम अ फ्रेश 55 डिग्रीज फारेनहाइट ऑल द वे अप टू 83 डिग्रीज फारेनहाइट. वी आर गोइंग टू फ्लक्चुएट एंड इट विल फील लाइक 51 टू 86 डिग्रीज फारेनहाइट डिपेंडिंग ऑन द विंड एंड सनशाइन. ऑल्सो टुडे इज अ बिट वार्मर देन यस्टरडे. कल था 78 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर एंड टुडे वी आर अपग्रेडिंग टू 83 डिग्रीज फारेनहाइट. यानी कि समर ऑफिशियली हमें नमस्ते कह रही है. वैसे बाहर निकलते टाइम लेयर के प्लेयर बनो एज आई ऑलवेज से एंड साथ साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड मिर्चीदार तरीके से एसपीएफ 50 प्लस प्लस प्लस लगाकर जाना बिल्कुल मत भूलना. एंड अभी मिर्ची लगाए रखो अपने साथ में. मैं हूँ प्रिसला, मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

there, my Mirchi family. This is Prusala with you. Sun rahe the Mirchi mornings. And the trailer for Bharat Bhagya Vidhata just dropped with the line, "The headlines remembered the terror, history forgot the heroes." And online, reactions came in fast. A lot of viewers are calling the trailer powerful and saying this one feels built for the big screen. You know, popcorn in one hand, unnecessary film analysis in the other. And the one thing fans seem to agree on, plenty of comments are praising Kangana Ranaut's screen presence, with many saying she owns every frame. Now, whether you are team first day, first show, team wait for reviews, or team I'll watch after somebody shares login details, one thing Bollywood never misses is giving us conversation material. Also, random desi expat ka thought hai, no matter which country we live in. Trailer release hone par, suddenly hum sab ban jate hai, cinematographers, screenwriters, डायरेक्टर एक्टर एंड व्हाट नॉट. लेकिन बात तो सही है, हम देसीज जो है ना वो जोहरी होते हैं, हीरा ढूंढकर आखिर निकाल ही लेते हैं. क्विक लव टू आर के जूल्स, जो कहते हैं कि उनके पास है रियल डायमंड ज्वेलरी एट रियल प्राइजेस, एंड वहां पर सच में ये हो रहा है. जीरो लेबर चार्जेस है, जीरो एक्स्ट्रा चार्जेस है, गोल्ड और डायमंड की प्योर वैल्यू तुम्हें मिल रही है. तो वहां जाओ, अपनी गोल्ड एंड डायमंड की शॉपिंग करो. ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है. और अभी मिर्ची पर बने रहो मिर्चीदार बैंगर्स के लिए. मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज एम RCHIBRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

my birthday squad. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings. And if you're celebrating today, first of all, happy birthday to you. Happy birthday to you. आज मेरी तरफ से extra चाय और केक allowed है तुमको. All right? और आज के दिन कैलोरीज काउंट नहीं करती है. नाउ द फन पार्ट, लेट्स सी हु यू आर शेयरिंग योर बर्थडे विद. सबसे पहले वी हैव गॉट टेनिस लेजेंड राफेल नडाल, एंड देन वी हैव एंडरसन कूपर, एंड आल्सो देयर इज जिल बाइडन, पेनेलोपी विल्टन एंड जेम्स प्योरफॉय. एंड फॉर म्यूजिक लवर्स, आज है बर्थडे द लेजेंडरी कर्टिस मेफील्ड का. तो आज के दिन अगर तुम इस धरती पर प्रकट हुए थे तो ओवर थिंकिंग बंद करो, एंड अभी अपने बर्थडे पर अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करते हुए मुझे भी फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. एंड व्हाट्सएप करना है तो 9033 मिर्ची, दैट्स माई नंबर 9033647244. राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: राइट, मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब सुनने वाले हो गोल्डन सिल्वर का रेट अपडेट।
1: जूल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,500, $4,500 पर ट्रेड उसके साथ। आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस कल से डाउनवर्ड ट्रेंड पर हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड में डेफिनेटली एक एंट्री पॉइंट बनता है। गोल्ड में जो इन्वेस्ट करना चाहें, इन्वेस्टर गोल्ड बार्स 1 ounce, 100 grams, किलो बार्स, पैम्प सर्टिफाइड गोल्ड और सिल्वर अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए हिंदुस्तान से, जो अबाउट 15% सस्ता है अमेरिका में गोल्ड के प्राइस, गोल्ड बार्स में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के था। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: दैट वाज योर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट विद मी प्रिसला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टा और एक्स पर फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब सुनेंगे हम कि सितारे क्या कहते हैं।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: एरीज यानी मेष राशि, आज ब्रेन ब्राउजर में 47 टैब्स खुले हुए हैं। डोंट प्रेशर योरसेल्फ विद इम्पॉसिबल गोल्स। इजी डे, सॉफ्ट लॉन्च एनर्जी। लकी कलर इज टैंजरीन, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी वृषभ राशि, समथिंग शाइनी में लुक एक्साइटिंग बट रीड द फाइन प्रिंट। देसी रूल अप्लाइज, ट्रस्ट बट वेरीफाई एंड देन आस्क दैट वन आंटी इन योर फैमिली ऑल्सो। लकी कलर इज ऑलिव ग्रीन, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, फ्रेंडली फेसेस आर नाइस बट डोंट कंफ्यूज वाइब्स एंड फैक्ट्स टुडे। इफ समथिंग फील्स रश्ड, पॉज। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 31। कैंसर यानी कर्क राशि, थिंग्स सीम स्मूथ but work emails can surprise faster than relatives asking beta shaadi kab, stay alert। lucky color is coral pink, lucky number is 8। leo yani ki sinha rashi, before launching a giant life plan today ask does this need to happen now, delayed drama is sometimes premium piece। lucky color is bronze, lucky number is 17। and last but not the least, virgo yani kanya rashi, recover, reset and continue। you're not behind, you are just buffering। lucky color is mint green, lucky number is 42। and there you have your rashi zone number 1। baki bachi 6 rashiyon ko lekar bas ittu se time mein wapas aati hu main, tab tak tum suno mirchi dar bangers only on mirchi mornings aur mujhe follow karo। mirchi press is my handle name on instagram and x and whatsapp par। mera number hai 9033 mirchi, that's 9033647244। stay tuned and stay hot।

0: Mirchi, it's hot.
1: ओ कुड़ियो गुड़ की न

हाय मिर्ची फैम, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड चलो कल मिलते हैं वाला टाइम आ चुका है. लेकिन बिफोर आई गो, वन लास्ट ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर योर हार्ट. बिग शाउट आउट टू सिनेमा फ्रॉम होम मेकिंग वेव्स ग्लोबली. मणिपुरी फिल्म बूम जस्ट हैड अ बिग मोमेंट एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, विनिंग 3 अवार्ड्स इंक्लूडिंग बेस्ट चाइल्ड एक्टर फॉर यंग स्टार गुगुन किपगेन एंड ऑल्सो बेस्ट डेब्यू फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर फॉर लक्ष्मी प्रिया देवी. एंड ऑनेस्टली आई एम लविंग इट बिकॉज एवरी देसी लिविंग फार फ्रॉम होम नोज this feeling. One minute you're explaining where Manipur is and next minute the world is applauding a story from there. Also, can we appreciate the energy? 4 days, 15 Indian language films, and one reminder that Indian storytelling isn't just one flavor, it's like a whole buffet. So whether your day ahead looks like meetings, classes, hospital rounds, spreadsheets, or pretending to understand office small talk, take this with you. Local stories can have global echoes. Thank you for spending your mornings with me, laughing, listening, and of course, Mirchi Dar Tarike Se. Main wo Priscilla, tada bye bye from me, but you can follow me Insta or X par. Mera handle name hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. That's MIRCHIPRIS. Right now, stay tuned and stay hot.

0: आज ना मेरे दिमाग में ये वाला गाना चल रहा है, सोने की साइकिल चांदी की सीट, आओ चले डार्लिंग चले डबल सीट। मुझे नहीं पता आपको एक गाने के बारे में पता है कि नहीं पता है, लेकिन यार मैं बचपन से बड़ी फिल्मी रही हूँ और मैंने सारे फिल्मी गाने जो हैं वो रटे हुए भी हैं और देखे हुए भी हैं।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
0: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा. And now you tune in with me on Mirchi. And actually, ये गाना सुबह तब से शुरू हुआ जब से मुझे पता लगा कि आज World Bicycle Day है. और आज हम जब उस एरा में रहते हैं जहां हर दिन सेलिब्रेट होता है, तो ये दिन तो हम भी सेलिब्रेट करेंगे। और इसी के साथ मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने साइकिल चलानी सीखी थी। और देखो बॉस, साइकिल चलाना आ जाना वाज एक्साइटिंग, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग वाज साइकिल चलाना सीखना। वो कहते हैं ना कि मंजिल से खूबसूरत सफर होता है, तो बात यहाँ भी कुछ ऐसी ही है। और साइकिल चलाना सीख लेने के बाद की यादें हैं, लेकिन ऐसा कोई दिन मार्क नहीं है कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ। लेकिन जिस दिन साइकिल चलाना सीखा ना, वो दिन हम सभी को अपनी अपनी जिंदगियों में याद है ना। आई थिंक मेरी लाइफ की शायद वो पहली फीलिंग थी जब मुझे लगा था कि मैं खुद से भी कुछ कर सकती हूँ। वाओ, आज से पहले मैंने कभी इस दिन की खासियत को इतनी गहराई से समझा ही नहीं था यार। आपके साथ बातें करते करते ना बाकी कितनी सारी बातें निकल जाती है। तो चलो किस्सों की कहानियों को आगे बढ़ाते हैं और मिडडे मोहब्बत पर 90s का गियर लगाते हैं। एंड द सॉन्ग कमिंग अप इज डेडिकेटेड टू माय पहली साइकिल। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर पहली साइकिल,
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज तुम्हारा जिक्र छिड़ा तो याद आया कि तुम्हें हासिल करने के लिए कितने पापड़ बेले थे यार। तुम शायद मेरा पहला बड़ा ख्वाब थी, और तुम्हें पाने की आस जब थी ना, तो लगता था कि बस तुम मिल जाओ तो लाइफ बन जाए। क्या पता था कि इस फीलिंग का ये सिलसिला आज तक चलता ही जाएगा। नेवरदलेस, तुम्हें पाने की एक ही शर्त थी, जो हर बच्चे के माँ बाप रखते हैं शायद, कि एग्जाम्स में ढंग के नंबरों से पास हो जाओ तो मिलेगी साइकिल। और बस यही मेरा उस साल का मकसद था। मुझे क्लियरली याद नहीं कि मेरे मार्क्स कैसे आए थे, कितने आए थे, लेकिन ये जरूर याद है कि तुम जरूर घर आई थी। सिल्वर और ब्लू कलर की बॉडी विद अ बैक रेस्ट, मुझे तुम्हारा लुक आज तक याद है। और वो पहली बार जब मैं तुम्हें स्टेशन रोड पर बनी साइकिल्स की शॉप से घर तक चलाकर लाई थी ना, वो मेरी लाइफ की पहली लॉन्ग ड्राइव थी। ऑफ कोर्स तुम्हारे घर आने के बाद मैं तुम्हें पूरे दिन तो नहीं चलाती थी, लेकिन तुम्हारी मेरे लाइफ में आने की खुशी मेरे दिल को दिन भर गार्डन गार्डन रखती थी। तुम्हें पता है, जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी ना, तब भी मैं इतनी खुश नहीं थी जितना कि तुम्हें लाने वाले दिन खुश थी। शायद EMI और पेट्रोल का खर्च सताने के लिए नहीं था ना, इसीलिए। तुम्हारे बारे में जितना बोलूं ना कम ही है यार। तुम मेरे बचपन का एक बहुत अहम हिस्सा थी, मेरी इंडिपेंडेंस की फीलिंग, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस का पहला लेसन तुम थी मेरी पहली साइकिल। पेडलिंग थ्रू योर मेमोरीज, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 90s में साइकिल्स और बॉलीवुड फिल्मों का ना बड़ा गहरा रिश्ता था। सारा जमाना
1: सारा का दीवाना। Midday मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और आज वर्ल्ड बाइसाइकिल डे है, एंड दिस मेक्स मी रियलाइज कि 90s

के बॉलीवुड का, इनफैक्ट उससे पहले के बॉलीवुड का भी, और साइकिल का नाता ना बड़ा गहरा रहा है। जाने कितनी बॉलीवुड फिल्म्स हैं या गाने हैं जहां साइकिल्स हैव बीन यूज्ड एज अ प्रॉप। जो जीता वही सिकंदर में तो साइकिलिंग प्लेज अ ह्यूज रोल। रिमेम्बर हाउ आमिर खान के फादर उनके बड़े भाई को एक हाई एंड साइकिल दिलाने के लिए कैसे पैसे जमा कर रहे थे, और उसी साइकिल पर रेस करके इन द एंड आमिर बिकम्स द सिकंदर। इनफैक्ट दिस वॉज द मूवी जिसमें हमें ये पता लगा था कि अच्छा साइकिल्स में भी गियर होते हैं। तब से आई वॉन्टेड टू राइड अ गियर वाली साइकिल, जो ख्वाब मेरा कोविड के टाइम पर पूरा हुआ। सोचो फिल्म में हमारी लाइफ का कितना अहम हिस्सा है ना, इनमें से न जाने कितने सारे पॉइंट्स निकल जाते हैं फॉर आवर बकेट लिस्ट, है कि नहीं। चलो जी, इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 90s बॉलीवुड फिल्म्स एंड गाने और साइकिल का जो रिश्ता है ना, ये कहलाता है जेन।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And cycle को Bollywood के certain eras में as a prop कितना use किया गया है, ये हम millennials से पूछो. So much so that कि आज भी अगर हम किसी scenic जगह पर cycle चला रहे हो ना, तो we feel like we are a part of a movie. और कैमरा हमारे ऊपर ही focused है. यही तो कमाल रहा है Bollywood का हम पर. And I still remember एक नई तरीके की cycle जो हमारी life में तब introduce हुई थी, जब दिल तो पागल है के title track में we saw माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार riding the same bicycle, which was a double seat cycle. Not just this song, अकेले हम अकेले तुम का वो गाना राजा को रानी से. Well, आमिर और मनीषा बीच पर साइकिल चलाते हुए गाना गाते हुए नजर आते हैं इस गाने में. तो ऑल इन ऑल बात सिंपल है. थैंक्स टू बॉलीवुड, साइकिल फॉर अस मिलेनियल्स इज इक्वल टू रोमांस. वी ईदर रोमांटिसाइज राइडिंग अ बाइसाइकिल और वी वॉन्ट टू गो ऑन अ रोमांटिक साइकिल डेट. हैक किरी, इसी बात पर हो जाए द नेक्स्ट ट्रैक. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: इंतजार में।
1: यार पता है लाइफ में किक कैसे मिलता है? लाइफ में किक तब मिलता है जब आपको लाइफ में चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, तब आपका एड्रेनलिन रश अपने आप बढ़ जाता है एंड यू फील लाइक ओके नाउ गियर अप फॉर दिस सिचुएशन। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक चैलेंज दिया जाए।
0: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और इसी चैलेंज को आज से हम कहेंगे मान ना मान करो गानों की पहचान। तो मैं आपको दो धुनें सुनाऊंगी, ये धुनें आपस में मिक्स हुई भी होंगी, लेकिन आपको पहचानना है कि ये दो अलग अलग गाने कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए ये धुनें बजाती हूँ जो कि मिक्स है। वापस से बता दूं, इसके अंदर दो गाने हैं और दोनों गाने आपको पहचानने हैं। आज के लिए धुन है

अगर आपके दिमाग में ये धुन का गाना पकड़ में आ गया है तो फिर फॉरन डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, अपना नाम, एक मैसेज और साथ ही साथ इस चैलेंज का जवाब आप मुझे वॉइस नोट के जरिए डीएम करके भेजो। मैं वेट कर रही हूँ आपका। हाँ, इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मनीषा कोइराला एंड अक्षय खन्ना की एक मूवी थी लावारिस। उसका एक गाना है जिसका वारिस कोई और है लेकिन नाम लावारिस का लगा हुआ है।
2: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अगर नहीं समझे तो समझाती हूँ। वेल, लावारिस का ये गाना। जिसका म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया है। वेल, ये गाने की धुन इज कॉपीड फ्रॉम द सॉन्ग जो अब तक आपने गेस कर ही लिया होगा, लेकिन फिर भी सुनाई देती हूँ यार। अगर आपके पास भी 90s या अर्ली 2000s की किसी भी फिल्म या गाने की इन्फो है जो कि कहीं से कॉपी किया गया है तो DM करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: If blue used to be for boys and pink used to be for girls, वैसे ही synthol used to be for boys and little used to be for girls.
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And usually synthol के ads were done by male models only. लेकिन आपको synthol का वो ad याद है जिसमें शाहरुख खान और गौरी साथ दिखाई दिए थे? Well, yes, ये couple was way ahead of their times. आजकल तो काफी कपल्स अपनी मार्केट वैल्यू बना रहे हैं, लेकिन बैक इन द 90s शाहरुख खान और गौरी ने इस आइडिया की शुरुआत कर दी थी विद अ सिंथोल एड। हे, बट व्हाट वाज दिस जेंडर प्रोजेक्शन जो एड्स के जरिए एक माइंडसेट बन गया था कि सर्टेन सोप्स आर फॉर मेन एंड सर्टेन फॉर वुमेन। लाइक आई रिमेम्बर, मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में लाइफ बॉय यूज नहीं किया है, जबकि माई फादर ऑलवेज यूज टू यूज इट। क्योंकि एड तो क्या, इस साबन के तो नाम में भी बॉय था, तो ऑफ कोर्स नॉट फॉर अ वुमन। चलो इसी बात पर शाहरुख खान का एक गाना हो जाए, एंड दिस सॉन्ग ऑन बिहाफ ऑफ शाहरुख खान इज डेडिकेटेड टू ऑल द गर्ल्स जिनकी आंखों का रंग कत्थई है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मैंने आज वर्ल्ड साइकिल डे पर साइकिल से रिलेटेड कई सारी बातें करी हैं, और अब मैं आपको उस एक्टर के बारे में बताती हूँ जो फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन के लिए कार में नहीं साइकिल पर पहुंचे थे।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सलमान खान की बात कर रही हूँ, तो नहीं, क्योंकि सलमान खान तो शौकिया तौर पर साइकिल चलाते हैं, लेकिन जिन एक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो मजबूरी में साइकिल चलाकर अवार्ड रिसीव करने के लिए गए थे, और ये है आशुतोष राणा, जिन्हें अपना पहला फिल्म फेयर मिलने वाला था फॉर द मूवी दुश्मन, लेकिन वो तब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल किया करते थे, एंड फॉर द अवार्ड फंक्शन ही चोज टू राइड अ बाइसिकल, एंड इन एन इंटरव्यू ही रिवील कि एट दैट टाइम ही एंड हिज नाउ वाइफ रेणुका शहाने वर डेटिंग ईच अदर, और रेणुका ने उन्हें एक ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करके सरप्राइज दिया था, एंड आफ्टर दैट आशुतोष ने रेणुका को एक कार गिफ्ट करी। इसे कहते हैं कपल गोल्स। तो चलो इसी बात पर आशुतोष की फिल्म संघर्ष से हो जाए अगला गाना। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: कैसेट के साइड बी का तीसरा गाना
2: मिर्ची 90s कैसेट।
3: कोयला मूवी में जो म्यूजिक राजेश रोशन ने दिया ना, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। इस म्यूजिक में ना एक कसक है जो लिटरली दिल के तार छू जाती है, एंड आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, क्योंकि जितना मैं कोयला के म्यूजिक को फील करती हूँ ना, उतने मेरे पास शायद अल्फाज नहीं होंगे टू एक्सप्लेन इट। बट दिस सॉन्ग,

वैसे तो इस गाने की सिचुएशन इन द फिल्म इज डिफरेंट, लेकिन आज की अगर बात करें ना तो आई फील कि दिस सॉन्ग इज फॉर दोज टू पीपल जो एक बड़े से शहर में जाकर अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां लोग अक्सर इतनी भीड़ में खुद को तन्हा ही पाते हैं, और जब दो तन्हा दिल मिलते हैं तो वो दोनों के अकेलेपन को समझते हैं और वहीं कनेक्ट बैठ जाता है, क्योंकि यही है वो तन्हाई जो दोनों को पास ले आई। और इसी के साथ नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू से हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर मेरा ख्याल करना है तो शो के बाद इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: क्या ही हद सेंशियस गाना है ये भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और मुझे याद है गाना मैंने शायद टीवी पे ये फिल्म आ रही थी तब देखा सुना था या चित्रहार में देखा सुना था। और ये जो अगला गाना हम सुन रहे हैं ना, ये भी कोई कम सेंशियस नहीं है, लेकिन ये मैंने पता है कब पहली बार सुना था, इसे मैंने एज ए रीमिक्स सुना था। इस रीमिक्स के वीडियो में थी आयशा टाकिया, शायद आपको याद आ जाए वो वीडियो जिसमें उन्होंने दो चोटियां बनाई हुई होती हैं और उस गाने में क्लब दिखाते हैं, लिफ्ट भी दिखाते हैं। अब तो याद आ ही गया। ओरिजिनली ये गाना जवानी दीवानी का, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन, आनंद बख्शी ने गाना लिखा, किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।
2: नाना, नाना।
1: ए,

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा आई का ओ जरनल सिंह, ओ जरनल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

1985 की फिल्म गुलामी जब बन रही थी तो उसके प्रोड्यूसर को कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक्चुअली काफी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई। तब फिल्म के स्टार्स में से जो सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी फीस नहीं लूंगा इस फिल्म के लिए, वो थे बड़े दिल वाले काइंड हार्टेड धर्मेंद्र जी। और फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को जब पता चला कि धर्मेंद्र जी ऐसा जेस्चर कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपनी फीस लेने से मना कर दिया। तो इसी फिल्म का ये ब्यूटीफुल गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: हेमा मालिनी की उनकी खुद की फेवरेट फिल्म्स कौन सी रही हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया था।
1: वैसे दुल्हन, किनारा, खुशबू, देन सीता गीता, इट्स अ डिफरेंट रोल, लाल पत्थर।
0: वैसे हेमा जी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे एक्सपोज करने वाली फिल्में या सेंशुअस रोल्स वो नहीं करती थी, जिसकी वजह उनको ये सब कंफर्टेबल नहीं लगता था, और उनकी मम्मा भी ये सब अलाउ नहीं करती थी, जो उनके करियर के काफी डिसीजंस लेती थी। वैसे हेमा जी से एक बार ये भी पूछा गया था कि उनकी मम्मा जब हमेशा उनके साथ फिल्मों के सेट्स पर रहती थी तो उनके सामने क्या रोमांटिक सीन्स करने में वो अनकंफर्टेबल होती थी।
1: हमारे परिवार के कोई भी सदस्य इस किस्म के सीन करने के समय सामने बैठे हों कैमरा के सामने, तो आर्टिस्ट को तो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। ये माँ हो या भाई हो या कोई भी हमारे घर के सदस्य, इट इज़ वेरी ऑकवर्ड सिचुएशन टू डू योर रोमांटिक सीन विद अ मैन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स।
0: चलिए इसी बात पे गाना सुनते हैं, जिसका पिक्चराइजेशन शायद इतना सेंशुअस नहीं था, लेकिन ये गाना एक अलग ही तरह का सेंशुअस और रोमांटिक है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची।

1983 की फिल्म सदमा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसका जो क्लासिक गाना है ए जिंदगी गले लगा ले, ये गाना सुरेश वाडकर जी की आवाज में है, गुलजार साहब ने लिखा है, इले राजा का कंपोज किया हुआ। और इले राजा जी जब इसे कंपोज कर रहे थे इस फिल्म में, तो उनके म्यूजिक ग्रुप में कीबोर्ड प्लेयर पता है कौन थे? A.R. रहमान। किसने सोचा था कि उस फिल्म के कंपोजर्स के ग्रुप में जो कीबोर्ड प्लेयर लड़का है वो और इस फिल्म के लिरिसिस्ट गुलजार साहब मिलके कुछ 25 साल बाद एक आइकॉनिक सॉन्ग बनाएंगे जिसे ऑस्कर अवार्ड मिलेगा। स्लमडॉग मिलियनेयर का जय हो भाई, ऐसी है जिंदगी, कभी लात मार देती है कभी गले लगा लेती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: Point three, Mirchi. It's hot.

Mirchi, it's hot. पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

नसीब फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और अपेरेंटली अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की साथ में लास्ट फिल्म थी। ऐसा सुनने में आता था कि अमिताभ बच्चन साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब की सेट्स पे देर से आने की आदत से परेशान थे, और यहाँ अपने बच्चन साहब तो एकदम परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाले हैं। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि वो उनसे नहीं हो पा रहा था बिकॉज शत्रुघ्न सिन्हा साहब बहुत लेट आते थे सेट्स पे, तो उन्होंने उनके साथ काम करना फिर बंद कर दिया। एक्चुअली आई थिंक ये 1981 की फिल्म है नसीब, उसके बाद इनकी कोई फिल्म आई भी नहीं साथ में, कोई पहले से बन रही हो लेट रिलीज हुई हो वो अलग बात है आई थिंक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

भाई लता मंगेशकर जी ने जब मैंने प्यार किया फिल्म के गाने रिकॉर्ड किए थे तो कैसे किए थे? मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप कहेंगे स्टूडियो में गा के माइक के सामने किए होंगे। ऑफ कोर्स वैसे किए थे, लेकिन उन्होंने ना उस फिल्म के सारे गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड कर दिए थे, क्योंकि फिर उनको अब्रॉड टूर पे जाना था, कॉन्सर्ट, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स वगैरह पे। और आप सोचिए, ये फिल्म आई थी 1989 में, और उस टाइम लता मंगेशकर जी 60 साल की थी। क्या उनका स्टेमिना, उनकी एनर्जी रही होगी। और उसके बाद उन्होंने ट्रैवल भी किया अगले दिन ये सारी रिकॉर्डिंग्स करने के बाद। ऐसे ही होते हैं फिर कर्मठ लोग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CHARU इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची,
2: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।

0: तुम्हारा नहीं।
1: देव आनंद साहब का असली नाम क्या था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और एक बार एक इंटरव्यू में इस पर खुद उन्होंने क्लैरिटी दी थी, सुनिए।
2: नाम है धर्म देव, मैंने धर्म को उड़ा दिया क्योंकि मुझे लगा कि धर्म बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है। Yes. देव रखा और देव के साथ आनंद जोड़ दिया, इसलिए आनंद मेरा सरनेम है और इसलिए मैं धर्म देव आनंद से देव आनंद।
1: और अर्ली 40s जब वो लाहौर में ग्रेजुएशन करने के बाद बॉम्बे आ गए थे एक्टर बनने के लिए, उन दिनों को याद करते हुए सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
3: मैं लाहौर गम कॉलेज में था, मैंने बीए ऑनर्स किए थे और मैं एमए जाना चाहता था। मेरे पिताजी की उस वक्त माली हालत ठीक नहीं थी, तो मैंने थर्ड क्लास कंपार्टमेंट की टिकट पकड़ी और मैं किसी को बम्बई में नहीं जानता, किसी को नहीं जानता था। मैं बॉम्बे सेंटर में उतरा, मैं 2 साल का स्ट्रगल किया और 2 साल के स्ट्रगल के बाद जब मुझे ब्रेक मिला हम एक है में, तो हम एक है वो दौर था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी और उसके बाद मैंने हिंदुस्तान का आजादी का ना देखा, सारे फेजेस देखे हैं।
1: कई बार मुझे लगता है कुछ पुराने एक्टर्स में एक अलग तरह की संवेदनशीलता इसीलिए होती थी बिकॉज इन्होंने इतने बड़े बड़े लाइफ इवेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, और फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

प्रोफेसर फिल्म का गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में शमी कपूर के ऑपोजिट थी एक्ट्रेस कल्पना। इनका पूरा नाम कल्पना मोहन था, एक्चुअली इनका रियल नेम अर्चना मोहन था और ये फ्रीडम फाइटर अवनी मोहन की डॉटर थी। अवनी मोहन एक पॉलिटिकल पार्टी से भी कनेक्टेड थे और कल्पना जी बहुत अच्छी कथक डांसर भी थी। और कई बार ऐसा होता था कि राष्ट्रपति भवन में जब बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया जाता था बाहर के देशों से भी, तो जब कोई ऐसा कथक परफॉर्मेंस होता था तो उनको इनवाइट भी किया जाता था। काफी फिल्मों में थी ये, प्यार किए जा फिल्म में थी एंड तीन देवियां फिल्म में वो जो गाना है अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, उस गाने में जो एक्ट्रेस हैं वो कल्पना जी ही तो हैं देवानंद साहब के साथ। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1968 की फिल्म शिकार का सुपरहिट गाना पर्दे में रहने दो। इनफैक्ट इस फिल्म के और कोई गाने याद भी नहीं है, यही गाना इकलौता है जो याद रहता है जो सुपरहिट हुआ था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये गाना जब फिल्म के ट्रायल शो में आशा पारेख जी ने देखा ना, तो उन्होंने ऐसी डिमांड की कि इस गाने को फिल्म से हटा दिया जाए। ऐसा सुनने में आता है कि काफी लोगों ने उनके ऐसे कान भर दिए थे कि ये गाना अश्लील है। इनफैक्ट ये भी सुनने में आता है कि लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाने से मना कर दिया था क्योंकि उनको भी ये गाना अश्लील लगा था। बताइए कितने सीधे लोग थे उस टाइम के, ऐसे ऐसे गाने उनको अश्लील लगते थे, आज तो उनको क्या ही लगता होगा। खैर काफी बातचीत डिस्कशन आर्गुमेंट के बाद फाइनली ये गाना फिल्म में रखा गया, जिससे आशा पारेख जी थोड़ी तब नाराज भी हो गई थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई, गाना सुपर हिट हो गया, इस गाने के लिए आशा भोसले जी को उस साल बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, तब सारी नाराजगी दूर हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3
0: मिर्ची, इट्स हॉट। पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: हटा दो।
1: प्रेम चोपड़ा साहब हिंदी मीडियम स्कूल के पढ़े हुए, और जब वो कॉलेज पहुंचे तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या मिली? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस करनी पड़ी वो थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए बच्चे तो फटर फटर अंग्रेजी बोले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। सुनिए इस सबसे प्रेम चोपड़ा साहब को क्या रियलाइज हुआ, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
2: तुमको देख के मैं बड़ा ताजुब करता था, यार कितने कॉन्फिडेंस है इनमें और हम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो मैं चाहता था उनकी तरह बनूं। तो फिर मैंने ड्रामा में कोशिश की काम करने की, तो मुझे मिला एक ड्रामा। दूसरी तीसरी दफा जब इंग्लिश में प्ले मिला तो मर्चेंट ऑफ वेनिस शाइलॉक का रोल मुझे दिया गया, जो सेंट्रल रोल था, वो बड़ा लोगों को पसंद आया। तो मैंने आके अपने वालिद को, वालिद साहब को कहा कि देखिए मैं ये करना चाहता हूँ ट्राई। कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ये बड़ी इनसिक्योर प्रोफेशन है, तुम भी अब जैसे IAS वगैरह कुछ करो या कुछ अकाउंट्स ऑफिसर बन जाओ, उसमें मुझे ही करना चाहिए रेगुलर ऑफिसर। तो मैंने कहा कोशिश तो मैंने ज़रूर करूँगा। अरे कहते हैं भाई ये बड़ा गड़बड़ है प्रोफेशन, क्या करोगे तुम? तो और मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकूंगा वहाँ, ये सोच सोचना, आई हैव लार्ज फैमिली एंड आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैंने कहा नहीं मैं जाके कोशिश करता हूँ। दो महीने का खर्चा लेके मैं चला गया।
1: चले तो गए, लेकिन बॉम्बे पहुँच के उनका सफर इतना आसान नहीं था। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: कई लोगों के आइडल गुलजार साहब के आइडल रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन टैगोर जी का लिटरेचर गुलजार साहब की लाइफ में कैसे आया, लेकिन उससे पहले किस तरह की किताबें वो पढ़ते थे, सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में गुलजार साहब ने क्या शेयर किया था।
1: टू स्टार्ट विद बड़ी जासूसी नॉवल पढ़ा, थ्रिलर्स, तलिस्मी, छुराव, बहराम, डाकू। वो एक लाइब्रेरी थी छोटी सी, पार्टीशन हुआ था, खोखे बना लिए थे रिफ्यूजीज ने ले जाके। अखबार भी बेचते थे, किताबें भी देते थे, किराए पर भी देते थे, और हफ्ते में चार आना और किताबें जितनी चाहो पढ़ लो। यही उनका अंदाजा था, भाई एक किताब पढ़ लेगा, दो पढ़ लेगा और क्या। और मैं अब जासूसी नॉवेल का तो ये चस्का होता कि जब तक क्लाइमेक्स ना मालूम आप छोड़ते नहीं, और मैं रात भर में उसको खत्म कर लेता था, अगले दिन फिर पहुंच जाता था। तो तंग आ गया वो आदमी मुझसे, घाटे वाली बात हो गई ना। उसने यही कहा कि चारण में कितनी किताबें दूंगा भाई मैं तुम्हें, तो नहीं। और ये ऊपर के शेल्फ से उसने एक किताब निकाली और मुझे ये ले जाओ, और नहीं है किताब अभी। That man didn't know कि उस एक वक्त में जब वो किताब निकाल रहा था वो मेरी जिंदगी का रास्ता बदल रहा है। वो किताब उसने दी थी, उसका नाम था गार्डनर बाय टैगोर, नज्मों का ट्रांसलेशन था, पहली नज्म थी माली, बस वो किताब लग गई। That changed my total pattern of reading and picking up books and literature, जिसे कह सकते हैं आप। That became my passion.
0: Celebrating गुलजार साहब पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। नफर

फिर आप क्या हैं? हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है, अजी बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

ये पत्थर और मोम के जिक्र से बशीर बद्र साहब की ये गजल याद आ गई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा। बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीने, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छूकर नहीं देखा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्च।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: भाई औरतों को जनरलाइज करने में और उनको अलग अलग टैग्स देने में लोगों को बड़े मजे आते हैं।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप। और कुछ टाइम पहले सुष्मिता सेन को लेकर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने ललित मोदी के साथ अपना रिलेशनशिप पब्लिक किया था ऑन सोशल मीडिया, जिसके बाद से उनको गोल्ड डिगर वाला टैग दे दिया गया। बट रिसेंटली ललित मोदी ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि भाई इट वॉज नॉट सुष्मिता सेन हु वॉज द गोल्ड डिगर इन द रिलेशनशिप, बट शी वॉज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ ललित मोदी हिमसेल्फ। ज्यादातर खर्चे उनके रिलेशनशिप में जो होते थे वो सुष्मिता बेयर करती थी। एंड लाइक सुष्मिता हैड मेंशनड इन वन ऑफ हर कैप्शंस, जब उनको इस चीज को लेकर ट्रोल किया गया था कि भाई आज भी उनको गोल्ड से ज्यादा डायमंड्स पसंद है, दैट टू द वंस दैट शी बाइज फॉर हरसेल्फ। और जो मिलेनियल किड्स हैं, एक्चुअली दे नो कि भाई सुष्मिता सेन हैज ऑलवेज स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। इनफैक्ट शी इज अ सेल्फ मेड वुमन, जिन्होंने अपनी जिंदगी हमेशा अपने टर्म्स पे जी है। एंड ऑनेस्टली आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट ललित मोदी एज वेल राइट नाउ, क्योंकि आज के डेट में बहुत कम ऐसे मर्द बचे हैं जो एक औरत की इज्जत उछालने से ज्यादा उसको संवारने में विश्वास रखते हैं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Message.

0: Mirchi, it's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बचा